ते चुई छोटे छो मंगवी खाता खालू का आखो चीचे दाबी मा चोता अभी ताले अने अनु फैहलाकू खाना को दा फा दा मा गावी जा एह छो का मी खा उहलाकू मी खा वी ब्योशान यहा जा जाए मी खा के गया को जो नो चीचे था फा दा मा गावी निमा को जा वी अछो था नो यो था दोनो हलाकू नो खा के कु हाना को ला लो